mata la tanan la mani jo bhavani bhavani la tanan la mani jai jai bhavani jai jai ho jagati amata लाता नंदमाई जय जय भवानी भवानी लाता नंदमाई जय जय भवानी। अल्प बुद्धि से माता गांधु तेरा गीत बारों महीनों की तेरी सुनो नुवेदित जय जय हो जगती माता लाता नंदमाई जय जय भवानी भवानी लाता नंदमाई जय जय भवानी। तेरे नामों का गीत गोला तेरे सुनो लारीत तेरे नामों का गीत गोला तेरे सुनो लारीत माघ की सष्टमी महामाया कुलदा तेरा द्वार जय जय भवानी भवानी कुलदा तेरा द्वार जय जय भवानी। ताम विजय सर्वजनु भूला न गाड़ा ताम विजय सर्वजनु ढोल नगारा तेरा मंदिर माँ मेरी माया तब कुल दा द्वार जय जय भवानी भवानी तब कुल दा द्वार जय जय भवानी। घूमा पूजारी नयांदु देखा रांदा लोग घूमा पूजारी नियंदु लख्या रांदा लोग लाडू फापर तेरो चढ़ दो तब भोग लाडू फापर माता चढ़ दो तेरो भोग जय जय हो जगदपानंदा ल्योला तेरो नाम जय जय भवानी भवानी ल्योला तेरो नाम